0: 我想家中种子你把手背，香菇接上吃肉饼了。那些？现在龙种子手背，并且长毛肉饼了。嗯。那些。他云南白了。现在，龙种子现在用肉饼了。那些了了。老了。嗯。他云南白了。了。那些了了，徐天教官，你看看给你们录些的周边的那些人呐。
1: 那是，那是哦了，嗯，我来看山。看山，看几张了？
2: 老看山，看山先来看秀呢。我们不多耶。
1: 那是，我们多几了？天天下班肯定呢。
2: 我人生不明的，讲个有给了。
1: 那是，看了没事啊？那些的，我们多几了？给收平的资源呢？
2: 第一个被他们，我那做个点零点零个，做中把给那自然的水平给用起出来的，给几多嘛了？等你给点了，等你下班之后呢，给到我这些了，都给搬上了。 所以你这边啊，那做给了用当，我这用的配的，可是现在的家娃啷个现在的，我这些每年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
0: ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན
1: ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ये बेलुशे दिना थंगदो इन न्या पुनि लेजेगे थोंग गे चेरे लाइ डॉल
2: जी जी
1: के चेरे ला दा शेबा दिदि न नि गे तव त हिला ने नि ला पुया ये गला
2: नेस तो छेना
1: ते दिने न अपयु रि शो पे पामा पंजे न न पुया ये ला ते थलिन ये गि बुल थमा तंग थरी ला
2: नो ये गि दिनम जु शुए छोंग सो थिंग गि शु बि
1: ला ये ला ला तो जे ला ता छि तो
2: नो
1: ला तो जे ते ते ना जि गला ते ए ता ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི
2: ཕྱད མི ཡིན
1: ཁྱི ཕྱད མི
2: ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན
1: ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི 我打架啊这个等把多些些目的那个给了你的面包个当不成就这个说说个土街那个场面顺着和那么差了那个的安排个了个差了那么那么这个你们提领个这个个把住个别话的那个就安排个了个嗯有些个月别给那的那个破账个这个月包个当个破账些那个能够目的个是要把个当个这笔钱那个落笔 최다가시여바가당아자부룩비나마최다디에니게드이만달룬데가지게제와여바가당안틴 이엠비게 마이시 나마게모니게 여바가당 안파송부 누부상보가디아이게 소송 창로가자 아르징에 창송로로가자 아르징에 대종 메로가자바지가 메도데로가자 아르징에 자보록비 최자티에게 투어라가 롬비나마제비 탑라가마자나가자보 롬비가 타바라가 유니가 토바소나가 자보 록비 최자가디아이게 투어라가 랑기나마제시 소니가 두고소비게 송다가지아니게 요아이말라세
2: ལས་ཏོ་ཅན་ན་གུར་ལ་ལས་ཏོ་ཅན་ན་ཡང་ཕུ་ཉི་ལེ་ཏེ་རིན་ཅུག་ལེ་ཡ་ཡག་ཏོ་ཡག་ཏེ་ཡོང་ཏོ་ཤིམེན་དེ་ཤུ་ཅུག་གལ་ལ་ན་ལས་ཏོ་ཅན་ན་
1: ལ་ཏོ་དེ་ད་ལུག་